0: வாணி ஆகாஷ்வாணி.
1: वेल बिल्कुल वापस है आप सभी के साथ. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर अपनी दोस्त आरती मल्होत्रा के साथ. सवाल पूछ चुके

0: மனம் தடவை பேசிவிட்டாலும் ஆசைகள் குறையாது. ஆயிரம் தடவை பேசிவிட்டாலும் ஆசைகள் குறையாது. ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சம்மதமான பின் ரகசியம் கிடையாது. ஒரு ரகசியம் கிடையாது.
1: கேட்ட அந்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது திரைகானம். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அபர்ணா சிங். पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ. राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है. प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी. इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नवन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे. सभी जिला पुलिस अधिक

0: शिक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धने खाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री रवि रविशंकर के 70वें जन्म समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ त्रिनिदाद और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान जहां गिरमिटिया भारतीय मजदूर सबसे पहले त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। डॉ. जयशंकर ने नेल्सन द्वीप पर त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए डॉ. कमला परसद बिसेसर के साथ भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि भारतीय सहायता से समर्थित ये परियोजना एक अमर यात्रा की साझा विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स 152 पर ही सिमट गई। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से रविंद्र जडेजा ने सर्वाधिक 38 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 229 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिम राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal yesterday. Governor R. N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Nabin and several others leaders of BJP attended the ceremony. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay yesterday met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Tamilaga Vetri Karagam, TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 seats in the 234-member house, required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidudalai Sirithagai Katchi, VCK, and the Indian Union Muslim League, IUML. The top brass of the Congress party yesterday held a meeting in New Delhi to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Dasmunshi, general secretary organization KC Venugopal and senior Kerala leader Ramesh Chennithala and VD Sathisan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He will also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Thereafter, Prime Minister Modi will travel to Telangana to lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistic efficiency, enhance safety, and provide a better travel experience for people. Later in the day, Mr. Modi will reach Jamnagar on a two-day visit to Gujarat. India has conducted a successful flight trial of an advanced Agni missile with MIRV, Multiple Independently Targeted Reentry Vehicle System, from Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, the Defence Ministry said the missile was flight tested on Friday with multiple payloads targeted to different targets spatially distributed over a large geographical area in the Indian Ocean region. The Enforcement Directorate has arrested Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in connection with an alleged money laundering case involving Hampton Sky Realty Limited. Earlier, the ED had conducted operations at five locations in Delhi, Gurugram and Chandigarh in connection with the case. The action was taken under the criminal sections of the Prevention of Money Laundering Act, PMLA, 2002. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Rajasthan Royals by 77 runs at the Savai Man Singh Stadium in Jaipur last night. Earlier, GT have set a 230-run target for Rajasthan Royals. In reply, Rajasthan Royals could secure only 155 runs in 16.3 overs. Asked to bat first, Gujarat Titans scored 229 for 4 wickets in 20 overs. Earlier, Rajasthan Royals won the toss and elected to bowl. In archery, India's Sahil Jadhav won a bronze medal in the men's individual compound event at the World Cup 2026 Stage 2 in Shanghai, China, yesterday. The 25-year-old Maharashtra archer defeated Denmark veteran player-cum-coach Martin Damsbo 147-144 in the bronze medal playoff to secure India's first medal of the ongoing tournament. India's U15 girls delivered commanding performances in the semi-finals at the Asian Boxing U15 and U17 championships, with 9 boxers advancing to finals across weight categories in Tashkent yesterday. And that's the end of this news bulletin.
2: நேரம் 12 மணி 10 நிமிடம். ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலி நிலையம்.

0: நேயர்கள், இதுவரை இரவின் மடியில் கேட்டீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அபர்ணா சிங். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नवन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और

0: विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती है। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम का सामना आज चीन से होगा, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिम राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रॉयलसीमा, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका आज बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal yesterday. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtaniya, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of BJP attended the ceremony. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay yesterday met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay said to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Tamilaga Vetri Kadagam, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, VCK and the Indian Union Muslim League, that is IUML. The top brass of the Congress party yesterday held a meeting in New Delhi to discuss government formation in Kerala. The meeting, convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence, was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Das Munshi, general secretary organization KC Venugopal, and senior Kerala leaders Ramesh Chenithala and VD Satishan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon.

0: நிகழ்ச்சியின் நிறைவாக பாகன் திரைப்படத்திலிருந்து பாடல்களை கேட்டீர்கள். இனி நினைவில் நின்றவை நிறைவு பெற்றது. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அபர்ணா சிங். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नवन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम TVK के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायक

लोगों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ ट्रिनिडाड और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान है जहां गिरमिटिया भारतीय मजदूर सबसे पहले ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। डॉक्टर जयशंकर ने नेल्सन द्वीप पर त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए डॉक्टर कमला परसद बिसेसर के साथ भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय सहायता से समर्थित ये परियोजना एक अमर यात्रा की साझा विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இனி தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை டெல்லியிலிருந்து. அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने की और उनके आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल N. रामास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति N. रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल K. कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में तलिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया।

0: தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை டெல்லியிலிருந்து. அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அபர்ணா சிங். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे और वे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल नवन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज चेन्नई पहुंचेंगे। विजय आज चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए खरीद संबंधी अनुपालन दिशा निर्देशों की नियमावली लागू करके केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत बाहरी स्रोत और संविदा कर्मचारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य वेतन का समय पर भुगतान, सामाजिक सुरक्षा अंशदान का अनिवार्य भुगतान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करना है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे दिन के 11 बजे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित

0: भगवान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद जाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुड्डेबेलूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा के तहत महत्वपूर्ण सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। ये अस्पताल हैदराबाद में अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दौरान श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे और कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया है। तमिलनाडु में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारे संवाददाता ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज चेन्नई पहुंचेंगे। कई वरिष्ठ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल के नेता, फिल्मी हस्तियां और पार्टी कार्यकर्ताओं के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि केरलम के नए मुख्यमंत्री का निर्णय पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का होगा और जल्द ही नाम की घोषणा कर दी जाएगी। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगासामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगासामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगासामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए खरीद संबंधी अनुपालन दिशा निर्देशों की नियमावली लागू करके केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत बाहरी स्रोत और संविदा कर्मचारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य वेतन का समय पर भुगतान करना, सामाजिक सुरक्षा अंशदान का अनिवार्य भुगतान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानून के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करना है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा और ये मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He will also